हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख

आप करे तै आप कराए, पूरे गुर कै शब्द मिलाए, नानक नाम मिलै वडियाई, आपे मिल मिलावणिया, माज महला तीजा। इको आप फिरै प्रसन्ना, गुरमुख वेखा ताहु मन भिन्ना, त्रिसना ताजो सहे सुख पाया, एको मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी, इक स्यों चित लावणिया, गुरमती मन इकत घर आया, सच्चै रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग भूला तां आप भुलाया, एक विसार दूजै लोभाया, आंदन सवा फिरै परम भूला, बिना मैं दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म विधाते, गुरसेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वडियाई, हर कै नाम समावणिया। माया मोहे हर चेतै नाही, जंपर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किश नजर ना आवै, मनमुख पाप पचावणिया। एक रंग राते जो तुद आप लिवलाए, पाए भगत तेरै मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुखदाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शै दे वडियाई, जमकाल तसनेड़ न आवै, जो हर हर नाम ते आवणिया। आंदन राते जो हर पाए, मेरा प्रमेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावै सच वखाणे, नानक नामरते बैरागी, निज कर ताड़ी लावणिया। माज महला तीजा, शब्द मरै सो मोआ जापै, काल ना चापै दुख ना संतापै, ज्योति विच मिल जो समाणी, सुन मन सच समावणिया। हां वारी जियो वारी, हर कै नाए सो बापावणिया, सतगुर सेव।